हेलो नमस्कार और चिबाई दोस्तों, मैं आरजे टेम्स आप सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं 107.7 पे एफएम जॉय। आज रविवार का दिन है तो हमेशा की तरह आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हुए इस खंड का शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा। आज के दिन हम आपके लिए बहुत सारे मसीह भक्ति गीते लेके आए हैं। आशा करते हैं कि जो गीत हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे आपको पसंद आएंगे और हमारा साथ अंत तक देंगे इस उम्मीदों के साथ। पहला गीत प्रस्तुत करने का समय हो चुका है और ये गीत खास करके फिर से एक बार में प्रस्तुत करने वाला हूँ। अभी 10 बजने वाले हैं क्योंकि 9:30 पार हो चुके हैं तो गिरजा का समय हो चुका है। यहाँ पे जितने भी लोग किसी भी कारणवश बीमारी की वजह से हो या फिर अपने कर्म की वजह से यानी कि अपने कार्य की वजह से गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे और अमरीक भी तेतान गंती नहीं छो ले दम लो तेतान, उन सभी के नाम में अगला ये पहला गीत प्रस्तुत करने वाला हूँ। किसी भी कारणवश मैंने पहले ही कहा था कि गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे हो तो पर चिंता मत कीजिए। आज के दिन हम आपके दिल और आपके पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए मसीह भक्ति गीते प्रस्तुत करने वाले हैं। तो पहला मसीह भक्ति गीत जो कि होगा दोरपुई वेंगथर कौशन मसीह संगति गीत मंडली की ओर से गीत के बोल

नहीं था, एक था कौशल मसीह संगति गीत मंडली की ओर से गीत के बाद बोल थे बादशाह। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है। जो गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, फिर से एक बार सुनने वाले श्रोता हूँ आप सभी के नाम होगा, बहुत ही खूबसूरत गीत होने वाला है ये। सिनोद मिशन कोर की ओर से गीत सुनने वाले हैं हम। गीत के बोल तू वही प्यार है, गीत मुझे बहुत ही पसंद है। जब भी गीत में सुनता हूँ पता नहीं शरीर को अलग से ही ताजगी महसूस होती है और ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती है ना वो भर भर के आती है। ऐसे लगते हैं मुझे जितनी भी कठिनाइयां हो, आप सभी को प्रभु परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। कठिनाइयों के समय ही नहीं, हमें अपनी खुशी के अपने सफलता के दिनों में भी प्रभु परमेश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए आइए सुनते हैं तू वही प्यार है सिनोद मिशन कोर की ओर से।

तू वही प्यारी है गा रहे थे हमारे सिनेट मिशन कोर। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले, जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं एसएमएस के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पर, मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ। नोट कीजिएगा अपने कलम यानी पेन के साथ और अपनी मोबाइल के बटनों के साथ भी आप सेव कर सकते हैं हमारे नंबर। तो उसके लिए आपको ये डायल करना होगा 6033373370। तो आपको इस पते पे हमें एसएमएस करना होगा, नॉर्मल एसएमएस भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है, जो गीत आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ फिर से एक बार, ये भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। हमारे मसीह भक्ति गीत जितने भी हैं वो सारे मसीह भक्ति गीत बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये गीत होगा फिर से एक बार दोरपुई वैंग था कौशन मसीह संगति गीत मंडली की ओर से, गीत के बोल बे इम्तिहान।

बे इंतहा एक खूबसूरत मसीह भक्ति गीत हमने सुना था दोरपुई वेंकटर कौशल मसीह संगति गीत मंडली की ओर से। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है, पर उससे पहले यहाँ पे हमारे दुआती क्या लिखते हैं, मेरी दुआती थी दो खेरा गाय छी नानी हिचो तरो इवान दिवती खात एम एम कवदों चे अरंतिंगा रंगत बया ओगलो दो ले ले यंग वो वो पुप नहीं तो बेन शब लती श्रामा बेन का चुना दोने वा वो खातलंग जोक में यंगो वो इंचो का मुद फु लो लो tak mai hi ron tini ka thiam nga le mut phulo chan tukin zing kar kar a thile nge ma te te yen niom takani ya idu tu sam result chok lo pani mai thei ni mo phir bhi koi baat nahi chu i tor me ngai me la tini kan tu rang kan tu rang pai me lo ma se hei ke ma ni lam chu chan chin thala om zel ti la o mi lo trom pui la kan lom pui na te chi tiang zel ni tor na te kan lo tor pui ve zel don chu ni to si ke sat अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है, पर उससे पहले यहाँ पे ललदिन पुया फाल कौन से क्या लिखते हैं आरजे प्ले ले तोर का नंगमा तान ले लुंगा थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले का ट्रियन ते वेंग शंग शंग अमीते तान अति पोकने ललदिन पुया फाल कौन वेंग लाई से बहुत बहुत शुक्रिया संदेश देने के लिए, हमें सुनने के लिए और अपने दोस्तों अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के नाम गीत सुनने के लिए ट्रियन छाते सिंह खत्ते ले mi song song tan lai tan sak wang in tan karan tan sak ve don chani to agla masi bhakti git phir se ek bar mai aapke liye prasut karne wala hu ye hoga hamare sinot mission kor ki aur se git ke bol jivan jal

सिनोत मिशन कोयर गा रहे हैं, ओ जीवन जल बहता चल बहता चल, ओ नुन्न तुई लोग सहल रो थी था थुपुई खा। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे हमारे मेरी दुआती लिखते हैं थिल ही इश थे सी तो किंचु दार ngai कथो थपति ओम जे तक्सो दार nga कथो थप ती नानी ओम तकनिया मूड फुल ऑफ टूरिन दार nga थो थपनिया रौ पुई खप मे दति ते न पुसे से मे लति पुका फुतो सु से ते खाना नी तो रंगा नी पेक तो मो खा आया थिल रा प्लग ले नसा तुअर तु हे गन गाय थमे खे चोय बोय ना ले मा nghe nè nè lòng tôi say nan hun gan man mè kìm ô tôi vô sao bấm nè jitni bhi apni kamzori hai apni gusse hai thin rim na te pon yang sumo hamare agla geet pure dur karenge isi umeedon ke saath iska matlab hai ki tu na kal play tur yan not ki vek ka base ya aur ye geet hum sunne wale hai kolosi pehre mission kor ki aur se geet ke bol shukriya aur hallelujah medley hone wala hai bahut hi khoobsurat geet hai ye masi bhakti geet kahenge isko to chaliye aaiye sunte hain shukriya।

कुल असिब एरिया मिशन कोर की ओर से हमने ये मसीह भक्ति गीत सुना था, शुक्रिया और हालेलुया मेडली वर्जन था। बहुत ही खूबसूरत मसीह भक्ति गीत कहेंगे इसको। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है। दोस्तों, हमारे दोस्त दुर्गेश जी के साथ बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार जुड़ने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुर्गेश जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, और जी आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कारम लिसनर्स, दुर्गेश नागनपुरे, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं, तो अगला मसीह भक्ति गीत फिर से मैं आप सभी के नाम प्रस्तुत करने वाला हूँ। और ये गीत जो होगा हमारे इस भाग के लिए अंतिम गीत होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए, फिर से एक बार मैं आपसे जुड़ने वाला हूँ। कितने बजे? 12:50 पर मसीह भक्ति गीतों के साथ मैं फिर से एक बार आकाशवाणी आइजोल एफएम 24.7 पे लौट के आने वाला हूँ। तब तक इंतजार कीजिएगा। जितने भी लोग गिरजाघर पहुंच चुके हैं, आप सभी को हमारे लिए भी प्रार्थना करना होगा। और मैंने शुरू में कहा था कि किसी भी कारणवश यदि आप गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे हो, बीमारी की वजह से या फिर काम की वजह से, आपके लिए हम यहाँ पे मसीह भक्ति गीत प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपके दिन मंगलमय हो। तो मंगलमय साथ ही पूरे वातावरण आपके लिए भक्तिमय बन जाए। तो अंतिम गीत सुनने वाले हम यहाँ पे सीनियर मिशन कोर की ओर से जय जयकार। तो दुर्गेश जी, मैंने ये गीत आपके लिए और आपके सभी प्रियजनों, अपने मित्रों, अपने परिवार के नाम चुना है, और हमारे साथ जुड़ने वाले, संदेश देने वाले श्रोताओं के नाम भी। तो सुनते हैं सीनियर मिशन कोर की ओर से जय जयकार।

0: विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन।

0: महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है

कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी मां को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला।

हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है,
नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं।

रहे हैं, इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,

मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने

लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के

0: सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हां, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

हेलो नमस्कार रुचि भाई दोस्तों, मैं आरजे टेम साहब सभी श्रोताओं का दूसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जवाय। हमारे इस दूसरे भागों में भी हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं मसीह भक्ति गीते। आज का दिन रविवार है तो आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हुए इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं अभी किसी भी माध्यम से, रेडियो से हो या फिर कार टेपो से हो या फिर मोबाइल एप्स से, जी हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, मोबाइल एप्स, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ऑन एयर। जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो का एप्स है ये ऑन एयर एप्स, वहाँ पे सर्च बार पे सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस खंड का पहला मसीह भक्ति गीत प्रस्तुत करने का समय भी हो चुका है। सुबह आप गिरजाघर जाके आ चुके होंगे तो दिन में भी जाने का समय हो चुका है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे किसी भी कारणवश, बीमारी के वजह से हो या फिर कामों की वजह से, आपके लिए हम बहुत सारी मसीह भक्ति गीते लेके आए हैं फिर से एक बार। तो पहला मसीह भक्ति गीत जो होगा नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप की ओर से, गीत के बोल यीशु अपने साथ है। और ये गीत जो होगा जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, मैंने पहले कहा था उन सभी के नाम और संदेश देने वाले श्रोताओं आपके लिए। तो गीत के बोल प्रभु परमेश्वर।

प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तो तेरी भलाई सारा सबकी जय। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने का समय हो चुका है। हमने ये पहला वाला सुना था नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप की ओर से, तो एक संदेश भी आए पढ़ने को मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोपहर का समय है तो ये मोते ते मूड फुल होते हो ऐसे में सलाह लूट ले आ इलो ले थर ले मैं वहीं चो इस अग्नि नतले रूसिया इंगे मोकन हंसो यंग ओ तीने तू तंगे ड्यूटी पुई लमा तीने। आपने सुना होगा हमारे पिछले भागों में हम किस किस के साथ ड्यूटी पे आए हैं। आज तो आपके लिए हम बता दें कि हमारे सीनियर मोस्ट और बहुत ही टैलेंटेड कहेंगे इनको, मल्टी टैलेंटेड है जी, ये आरजे सांगती है हमारे साथ और हमारे साथ आरजे पेशी भी है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कौन कौन आज के ड्यूटी पे हैं। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले ये आगे लिखते हैं, जी रहा हूँ अरिजीत सिंह आज लाइला। आज के दिन हमारे यहाँ से बॉलीवुड लागन प्ले छोक थे दोन लो प्रथियम दोन नी पथियन नी ते नी बुका पथियन ने न लोम तो सही कन बतला सत्ते लो लेते रो दुआइन कन फकने लो छे नी पोई कति छे ना। तो आज के दिन पूरे परमेश्वर के नाम हमारी ओर से। तो अरिजीत सिंह का गीत सुनना चाहते हैं ये, तो आपको हम निराश नहीं करेंगे। निराश का मतलब है कि बेई दंग ओ कं तुम मी आलो चलिया। तो आपके लिए हम प्रस्तुत करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत मसीह भक्ति गीत अरिजीत सिंह की ओर से। तो ये गीत होगा नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेंगे तेरे संग।

नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेंगे तेरे संग। बॉलीवुड के महान गायक अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज में हमने ये सुना था दुआते की फरमाइश पर सनसे बॉलीवुड फिल्म लागन प्ले थे वागादी। और आगे यहाँ पे ललदीन पी एफ फाल्कन वेंगलाई से लिखते हैं आरजे प्ले ले तो उर्खा नंगमा तान ले लंगा थवे जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले का ट्रियन ते वें रंग रंग मी ते तू तंगे नियंग ओ आरसी अनिया रिन मोया तुआंगा मुआन सवा रिन मोया वाल पुया और ये पता नहीं इन्होंने आ चिना ये आ चिन चिना का शोला वाला लाई लोमा ते पुया ललदिन पुया फाल्कन वेंगलाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे दोस्त थे। यदि वो हमें सुन रहे हो तो ये अगला मछली भक्ति गीत में उन सभी के नाम प्रस्तुत करने वाला हूँ और संदेश देने के लिए भी शुक्रिया इन खोम लो निम्मो। और दुआती आगे लिखते हैं तू नौ चुन तू तू स्टेटस कभी ऊपर लो सही तू और कर फकते ने ओ नंग मारी चौ छो देखा ओ देखा इन फ्रेम तो रंगा इला। और जितने भी लोग जी हाँ वर्ल्ड कप का समय है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ पथियन नी मा निमा से वर्ल्ड कप फुल नाइते ने बुका कुमली धना ओम श्री नवांग हिन आरो पुई लो थे लो इन टीम ट्रन जोंग थे पो इन रम ट्रन जोंग थे पो सोई थे वकने ये मासे तु मा असे लंपंग निलो जोंग इन फक थे रामनी चुवन नलो मों वियवंग। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अर्जेंटीना का फैंस है, तो कोई पोर्चुगल का, तो कोई फ्रांस का है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पर अंत में जो विजेता होगा वही सबके दिल जीतने वाले होंगे, है ना। तो अगला मसीह भक्ति गीत यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ पूरे वर्ल्ड कप के फैंस के लिए। तो ये गीत होगा सरवन कौशन मसीह संगति की ओर से, गीत के बोल ये सुने।

सरोन कौशन मसीह संगति गीत मंडल की ओर से हमने सुना था ईसु ने हमें क्या दिया है, आनंद दिया है, शांति दिया है, मुक्ति दिया है, बहुत कुछ दिया है, यानी कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हम कह सकते हैं ये। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले मेरी दुआती कंती ले, मेरी मतलब MARY, मेरी निलोविन हिंदी का मेरी मो कब का दुआती थी ना रिस्यू मिजो ट्रॉन्ग सुअर ये लिखते हैं ओई कनिंग ए गोस्पेल ला का थलंग मोका ती लो मा आ ती पका नहीं। तो आपने गोस्पेल ला थलंग नहीं किया, यहाँ पे आपने बॉलीवुड के गीत चुना है। गोस्पेल ला खाई लो थलंग ए मो लो तितलत का कशत कंट्र थी हम लोग से वही ने ता चो नो ती से नक नक देखा पई मी लो ओ वही ना ना ना चो इन की मा शे थी हम इन यंग ती से पो का पई ती लो ला मा से लो दम ले फ दो ने तुई मो ते ते पोल ते an chak buka kan chak buka ti la kan trong so long sumo min lom pui ve la kha kha ke ni pon gan lo lom pui ve zel chogen tor na pon gan lo tor pui ve zel ang chogen ti kha to agla ma si bhakti git pir se bar bia kule prasut kane wala ho ye hoga anugrah gospel kor ki or se git ke bol gao nacho

अनुग्रह गोस्पेल कोर की ओर से हमने सुना था गाओ नाचो। इस मसीह भक्ति गीतों के बाद यहाँ पे हमारे दोस्त मेरी द्वती लिखती हैं, यस लो पेल तो क्रिंगो अर्जेंटीना ही चो फाइनल नूतले मयंग बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज थुम तकनी है ये तार मोइसी यदि तीला तुम मते ते चो नन ऐ लोले वी तो रंगा इला फिर भी निया मिश्रिंग तानी चो नहर सत्रीना मासे मीते लोमना लो लिंपुई लो लोमपुई ते मीतेन तोरना लो तोरपुई तूनी ते ही अच्छलुत तुका मी जोंसन गंति थे लो छिना तियंग ही। फिर भी यहाँ पे अगला मसीह भक्ति गीत इसी के साथ मैं दुआती के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा और एक गीत होगा फिर से एक बार नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप की ओर से गीत के बोल सबैलाई सुनाउने।

जो और ये गीत जो होगा, माफ कीजिएगा, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी के नाम मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, और ये गीत के बोल यीशु अपने साथ है।

0: तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे यानी कि 2:35 पर मसीह भक्ति गीतों के साथ। तब तक सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल एफ एम जवाई 107.7।
1: Hei hei, akashwani aizolani metsepual.

हेलो नमस्कार रुचि भाई दोस्तों, मैं आरजे तैयब साहब सभी श्रोताओं का तीसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोय। ये आज के हमारे आखिरी भाग होने वाला है और मैं आपसे विदा लूंगा 3 बजे, पर चिंता मत कीजिए, उससे पहले बहुत सारे मसीह भक्ति गीत सुनने वाले हैं हम सब मिलकर फिर से एक बार। तो आइए प्रभु की स्तुति करने के लिए आप सभी को जय मसीह कहते हुए इस खंड को शुरुआत करने का इजाजत भी चाहूंगा और पहला मसीह भक्ति गीत प्रस्तुत करने का समय भी हो चुका है, जो कि होगा मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ डेविड सिंगर्स की ओर से गीत के बोल झूम झूम।

झूम झूम नाचो रे गीत मसीह के गाओ रे गा रहे थे डेविड सिंगर्स। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होने वाला है आइजोल नॉर्थ एरिया मसीह संगति कोर की ओर से गीत के बोल हो तैयार। और गीत फिर से एक बार आकाशवाणी आइजोल सुनने वाले श्रोताओं सभी के नाम में प्रस्तुत करना चाहूंगा, और जितने भी लोगों ने हमें संदेश दिए हैं और हमारे साइलेंट लिसनर्स कहेंगे, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और हम जानते हैं कि आकाशवाणी आइजोल जो है बहुत सारे लोग हैं जो हमें बिना संदेश भेजे हमें सुनते हैं हमेशा, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं अगला गीत आप सभी के नाम प्रस्तुत करना चाहूंगा। और गीत खास करके पमोया शेर खनमी तान सियाल लुटुकिन का थान सकंगा अनि ही पितलानी पसल ती दे खरांगो अनि श्रदे उमाना दिखान। तो आपके लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा और आकाशवाणी आइजोल एफएम 107.7 सुनने वाले श्रोताओं को मैं कभी भूलता नहीं। तो आइए चलिए सुनते हैं फिर से एक बार हो तैयार आइजोल नॉर्थ एरिया मसीह संगति कोर की ओर से।

हो तैयार आइजोल नॉर्थ एरिया मसे संगति कोर की ओर से एक खूबसूरत मसे भक्ति गीत था। गीतों ने बिल्कुल सही कहा है, हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि प्रभु परमेश्वर के आने का समय हो चुका है, विलंब नहीं करेंगे वो आने में। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनके साथ जब हम मुलाकातें करेंगे तो हम कौन से रास्ते पर जाएंगे और हमें वो कहाँ पे ले जाने वाले हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इसी के साथ अगला मसे भक्ति गीत फिर से एक बार हम सुनने वाले हैं, विजय गीत मंडली जेमाबोक की ओर से, गीत के बोल प्रभु भला काम।

विजय गीत मंडली जिम्मेबुक से ये गा रहे थे प्रभु भले काम। जी हाँ, भले काम हमेशा हमें करनी चाहिए, इसका परिणाम की बिना परवाह किए। और एक और चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जब हम अच्छे काम करते हैं किसी के लिए, तो इससे जुड़ी मैं बात कुछ कहना चाहूंगा कि वो हमें क्या वापस दे रहे हैं, इसकी उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो भले काम चाहे जितनी भी नेकी करे, यदि हम उसके परिणाम के बारे में सोचेंगे कि वो हमें क्या करेगा, वो हमें क्या देगा, तो ये सब काम नेकी नहीं होते, बस दिखावा होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी के लिए जब भी आप कुछ करें तो निस्वार्थ सेवा कहते हैं, जिसे हम उसको मिजो में तो यहाँ पे बहुत सारे वाई में कहेंगे इसको। तो उसी तरह से जीनी चाहिए हमें, किसी की इच्छा ना किए और किसी की परवाह ना किए अच्छे काम करते रहना चाहिए। इसी तरह से हमें प्रभु परमेश्वर से अंत में मुलाकात जरूर होगी। तो अंतिम गीत प्रस्तुत करने का समय हो चुका है क्योंकि 3 बजने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। इस गीत के बाद बहुत ही जल्द मिलेंगे इसी उम्मीद और इसी वायदे के साथ। जाने से पहले आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खास करके अपनी सेहत का। मौसम बहुत ही सुहावना है, कभी ठंड है, कभी बरसात होती है, तो कभी धूप देती है। तो इस समय आपको अपने शरीर की बहुत ही ख्याल रखनी चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े। दम लो फ्रिकलांते ही रियो में तुम लाइक कनखो अमदान ही कनखो अमदान अच्छे रे मवांगिन लो इन फिम कुरुला लो इन उलुकुला अदिन मुले तो आई तो रिन बेसे पतिला। तब तक मैं आपसे विदा लेने वाला हूँ। सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल एफएम 107.7, क्योंकि ये रहता है आपका हमेशा साथ। तो अंतिम गीत कोलासिब एरिया मिशन कोर से होगा। गीत के बोल आओ मिलके गाए पवित्र है।

0: hei akas wani aizol fm so waisa point pasari atanga puan ani wainju ni somni pariat pathian ni kan hun vai khatna top na kan lang ta a milongai thlatu te chunga lom thu kan saya hun man pui tu cheu hi binod gorong kania control room engineer duty c vanlal ompuya ani tlaidar li le minute somni pariata kan hun vai ni na control le dona milongai thle cheu turin ka som cheu in zavain hun man nuam fek ole
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने आज राजधानी विक्टोरिया में आपसी सहयोग की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। सेशल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। सेशल्स के साथ यूपीआई लागू करने का समझौता भी हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि योजना पर हुए समझौते से सेशल्स के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान सोना न खरीदने और विदेशी दौरे न करने की अपील पर सहयोग के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय एक नए अवतार में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत हो। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। हमलों में ईरान की निगरानी प्रणाली, संचार नेटवर्क, वायु रक्षा ठिकानों और ड्रोन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में 8 अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर फिर से संकट गहरा गया है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज ग्रुप जे के अपने अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। मेसी ने 80वें मिनट में फ्री किक पर गोल किया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोल की संख्या 19 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hamani, held bilateral talks at Victoria this afternoon.

रविवार के दिन हमारे दूसरे प्रसारण का पहला खंड है। हाजिर है इस खंड में हिंदी मसीही गीतों के साथ। तो चलिए दीजिए हमारा साथ और अपने प्यारे प्यारे और मीठे मीठे संदेशों के जरिए सुनिए पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ हमारे इस खंड को। तो चलिए वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और सुनते हैं इस खंड का पहला गीत एच वानल रिंगा की आवाज में, प्रभु तेरा प्यार।

यजवानल रिंगा की आवाज में प्रभु तेरा प्यार। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आपके संदेशों की ओर डालते हैं। मैं मोहिती हनिने से नमस्ते दूती नामले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी नमस्ते। और चलिए यूं ही भेजते रहिए अपना प्यार और हाँक दे अपा बिल्कुल ठेर है निनार जो किम किम लाइलम चे बैले है नंग पोत लाइलम चे बैले जनी नी दूती हुन नुआम तक आ हुनी मन थे इनान दू सकन का लान चे आहारंती आ कवा हन लोम छिने इला प्ले ले तुर का वी कुंग ते अमेंग मोई ते अपार पारे पु ओमेगा सांग ते तान का लाने अरंती आ अनंग पोई तान कन रुन लान वे चे और नेक्सा कन प्ले ले तुर ही सोनी लल नुन सांगे की आवाज में होगा सहारा मुझको चाहिए। और यहाँ पे वी कुंग तिहार जो किम किम क्लाइलम चिबाई ओ वंगाई ओम वे ते नंग पे गई ओम लतक वी कुंग तिहार। अगला गीत भी वी कुंग तिहार तान ओ सोनी ललुन सांग की आवाज में। चलिए सुनते हैं अगला गीत सहारा मुझको चाहिए।

सोनी दिलनुसांगी की खूबसूरत आवाज में और इस गीत के बोल थे सहारा मुझको चाहिए। उम्मीद है आप सभी हमारे इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे। पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ दीजिए हमारा यानी कि 100.7 FM जोगोई का और मैं मोहिते हानिन ऐसे ईतान लेखाकते पाता नरुंतिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अगला गीत हम आपको भी समर्पित करते हैं। तो चलिए वक्त को बिना जाये किए सुनते हैं एच वानल रिंगा की आवाज में और इस गीत के बोल हैं गाएंगे गाएंगे।

एशवानल रिंगा की आवाज में। और दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपके RJ किम किमी के साथ। और उम्मीद है आप सभी हमारे इन गीतों का आनंद लीजिए और ले भी रहे होंगे, और पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ दीजिए हमारा साथ इन प्रभु के गीतों को, प्रभु के मसीही गीतों को। तो अगले गीत की ओर हम बढ़ेंगे सोनी ललुनसांगी की आवाज में, ईशु तुम्हें बुला रहा है, और इस गीत के बोल हैं। और चलिए ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से, और खास मेरी तरफ से यानी कि आपकी आरजे की तरफ से, मैं आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मैं समर्पित करती हूँ।

सोनी लुनसांग की आवाज में। और चलिए इस गीत के साथ वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का। खंड का आखिरी गीत भी होगा सोनी लुनसांग की आवाज में। ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे, और यूं ही हमें प्यार देते रहिए हमें, यानी कि 100.7 FM जवाई को। तो चलिए लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ ठीक 6:40 पे, और इसी के साथ आप सभी सुनते रहे 100.7 पर FM जवाई।

ये था द विश्वासी द्वारा गाया गया गीत। और चलिए सुनते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, ललटन पुया और उनके साथियों द्वारा गाया गया गीत हाक्त्या पा बिल्कुल थिर यानिन अर्जे किम किम दुती नुआम ओ इनखोम लोग दोना इनखोम बानवे ले कलो लंग ले अंग अरंती आ बहुत बहुत धन्यवाद हाक्त्या पा बिल्कुल थिर जी इनखोम नुआम ले और हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। और गिरजा जाइए और गिरजा से आने के बाद आप तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ यानी कि एफएम जवाई के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, मेरे गुना ललटन पुया और उनके साथियों द्वारा गाया गया गीत।

ये था लल चंद पुया और उनके साथियों द्वारा गाया गया गीत, और इसी गीत के साथ वक्त हो गया है इस खंड के आखिरी गीत का। लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ, कुछ और यानी कि आज का आखिरी खंड रहेगा 9:02 पे। लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ। ओमेगा सांग ते मैसेज कम हुए ओ इनखोम नुआमले हनमन नुआमले रुंती आ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका संदेश इतना मीठा है, हम उसको जोर से नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे धीरे। हाँ कलोम एम एम ओ ओमेगा सांग ते आ। चलिए बढ़ते हैं इस खंड का आखिरी गीत, लटन पुए उनके साथियों द्वारा गाया गया गीत। ये गीत आप सभी के लिए, यूं ही हमें प्यार देते रहिए अपने प्यारे प्यारे और मीठे मीठे संदेशों के जरिए, और सुनते ही रहिए हमें यानी कि 100.7 FM जवाई को। तो चलिए इस खंड का आखिरी गीत आप सभी के लिए ये रहा।

यह आकाशवाणी आइजोल और आप सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जोएबीआरजेकिमकिम के साथ। और चलिए आज का तीसरा खंड और आखिरी खंड हाजिर है मसीही गीतों के साथ। तो चलिए इस खंड की हम शुरुआत करते हैं आइजोल वेस्ट एरिया मसीही संगति द्वारा गाया गया गीत, और इस गीत के बोल हैं यीशु मसीह।

आइजोल वेस्ट एरिया मसीही संगति द्वारा गाया गया बहुत ही खूबसूरत सा मसीही गीत। उम्मीद है आप सभी हमारे इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ भी हमारे इन खंड के गीतों का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा छिंगवेंग ब्याल मसीही संगति द्वारा गाया गया गीत और इस गीत के बोल हैं तेरी स्तुति।

तो चलिए ये था तेरी स्तुति, और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होने वाला है इज ऑलवेज तेरे मसीह संगति द्वारा गाया गया गीत, और ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से खास।

गीत के बोल थे पवित्र आत्मा, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपके अर्जुन की मी के साथ। उम्मीद है आप सभी हमारे इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा चिंगवे ब्याल मसीही संगति द्वारा गाया गया गीत, ये रहा मसीही।

चलिए इसी के साथ वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का और आप सभी से विदा लेने का. और यहाँ पे घाकते बाप बिल्कुल थी रहा नहीं और जी किम प्ले ले तुर खा मिंग मोई ते अमो या मुन पुई भी कुंग ते ओमेगा सांग दे दान कर लाने और उनती आ मिंग मोई ते यानी इसी इतान ले लल दिन पुई फल कौन ताने रंती नी. बहुत बहुत शुक्रिया लल दिन पुई फल कौन पो यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आपके सभी दोस्तों को हम पूरी मन और पूरी श्रद्धा के साथ हम गीत जरूर समर्पित करेंगे. ठीक है तो चलिए इसी गीत के साथ छिंग वेंग बयाल मसीह संगति द्वारा गाया गया गीत तेरे पास ये हो गया इस खंड का आखिरी गीत. यूं ही हमें प्यार देते रहिए अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे संदेशों के जरिए क्योंकि आपके संदेश ही हैं जो हमें पूरा करता है. अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए. और इस गीत के बाद हम लाइव आएंगे लेकिन आपका अपना आरजे आरके FB पे लाइव आएंगे तो उनका साथ दीजिए. और यूं ही प्यार देते रहिए और सुनते 100.7 पर FM जो. इसी गीत के साथ आप सभी को आपकी आरजे किमकिमी की तरफ से शुभ रात्रि.